0: जसले भदौ नेपाल सम्बचिन्छ सौपी खुद अनलागा पञ्चमी थोरेडियो नेपाल ख अनि नदी सह जिरुबी पाखे नेपाल भाषा समाचार। परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल भारतीय विदेश मन्त्री डाक्टर एस जयशंकर या पासाया बुने मिग भारतीय पर्मणे झयाती गुदु पर्मणे चोले परराष्ट्र मन्त्री खनाल समकक्षी डाक्टर जयशंकर नापा नाप्ला नदीगु परराष्ट्र मन्त्रालय धागुदु नाप्ला ज झोले निगु दे दथुया व्यापार लगानी स्वापु सञ्चार कनेक्टिभिटी ऊर्जा ओ जनस्तरीय स्वापु नापाया विशेष खनाला जुइगु थागुदु पर्मणे झोले नेपाल भारत दति दयावया चङ्गु बहुआयामिक स्वापिया त अझ टिसिलाके गु भलसा कागुदु थुएदथि भारतीय जनता पार्टी या बुने भारत भ्रमणे दिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाया सभापति रवि लामी छाने थौ नेपाल लिहा झ्याता लिहा झाइगु गोसादु। सभामुख डोलप्रसाद आर्याल संविधान व्यवस्था जुगु दलित समुदाय अधिकार प्रभावकारी कार्यान्वयन नीति संघीय संसद प्रतिबद्ध जुयागु ध्यादिगुदु जातीय भेदभाव छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस राष्ट्रिय दलित आयोग मिग येले गोसा गोगु ज्यासोले सभामुख कार्यालय जातीय विभेद ओ छुवाछुत नहके त सरकार वा छुन निकाय जक भाला मजुसे राज्य राजनैतिक दल नागरिक समाज संचार लागा शैक्षिक संस्था ओ फुक मनुते गुमङका भाला जुगु धयादिगुदु। सभामुख कार्यालय सामाजिक चेतना कानुन छेलाबुला ओ आर्थिक सशक्तिकरण यता नाप्नापान हेजके मागु ली बब्यादिगुदु ज्याजोले महिला बाल बालिका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्प संख्यक व सामाजिक सुरक्षा मन्त्री श्रीता बादी छुवाछुत भेदभाव उन्नत समाज नीति पङ्ग जुयासँग ध्यादिगुदु महान्यायाधिवक्त डाक्टर नारायण दत्त कण्डेल जातीय भेदभाव व छुवाछुत उन्मूलन यायत सामाजिक चेतना उपके त सरकार आयोगको स्वपुतै पी सकल छपछति जुई मागुली वेक्लम ब्यादिगुदु विक्रम सम्बत 2063 जेठ 21 गते तत्कालीन संसद नेपाल यात्रा जातीय भेदभाव व ठिट्यो मठ्यो नङ्किएको राष्ट्रिय घोषणा यागु ख थोदिया लुमन्ती दलित समुदाय न्याय सपाउँछ नीति राज्य संरचना लिचोलाइगु छेलाबुला जुइमा धैगु नारा नापा मिग जातीय भेदभाव व ठिट्यो मठ्यो उन्मूलन दिवस हङ्गु ख संविधान संशोधन नीति बहसपत्र देखे त निशङ्क कार्यदलमा पूर्व राष्ट्रपति पी डाक्टर रामवरण यादव व विद्यादेवी भण्डारी नापा ब्याग्लाम ब्याग्ला नाप्लाना संविधान संशोधन विशेष सुझाव मुङ्क गुदु प्रधानमन्त्री बलेन्द्र सहाय राजनैतिक सल्लाहकार असीम सहाय समेत जगते निसङ्घ कार्यदल पूर्व राष्ट्रपति पी डाक्टर यादव भण्डारिया छेहे वना नेपाल संविधान यता यी कथा व्यवहारीको अझ सेला के गो आज नापा सुझाव मुङ्क गुख थोए झोले पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर यादव नेपाली जनता एकको तधङ्गु सङ्घर्ष व मडिक वयाचङ्गु हिउपा संविधान या यी तना आपल सल या पिथङ्गु संविधान या मु मर्मयाता माका तेता राष्ट्रिय सहमति लेङ्का तया बहसपत्र दे के त कार्यदल या त सुझाव ब्यादिगु ख वेक्ला संविधान व्यवस्था यागु संघीयता लोकतन्त्र गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता औ समानुपातिक समावेशी थिए जागु मु था ते त अछुन्न तसे नुगु पुस्ता या हिलासोङ्गु माको भावना या त ध्याने त निहेज्या मागुली ब ब्यादिगुदु थथे याना पूर्व राष्ट्रपति भण्डारी आयाको संविधान यता यी कथा भिङ्केता वा मिगया दिने कुतया कथा खने दुगु लेखे कमजोरी यता भिङ्केता न संशोधन यता बब्यादिगुदु। सूचना तथा संचार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमल सेना प्रविधि कृत्रिम बौद्धिकता व एल्गोरिदम थे जागो निर्देशित आयागु हलिखे साहित्य मानव सभ्यता व जीवन जगत यता थुइकीगु सेनलागु आधारभूत माध्यम या कथम ज्यायना चङ्गु ध्यादिगुदु मिग ये गोसा गोगु हिमालयन लिटरेचर फेस्टिभल एन्ड राइटर्स वर्कसप स वेक्ल साहित्य समाज व मनोतेत आत्मचिन्तन व मानवीय संवेदना यता स्वागु कनादिल संचार मन्त्री तिमल सेना विश्व राजनीति अर्थतन्त्र प्रविधिसँग वोगु युपाया दथि न मनुत दथि अर्थ मसिका ओ भलसा यता माला चुङ्गु कना दिल जलवायु ह्युपा सिराहा बर्दिया सुर्खेत पर्सा कपिल वस्तु ये डोटी मकवानपुर चितवन या न मुक गुगु जिल्ला या चे गुगु फुटी निगु प्रतिशत जनजीवन लिचो लाखु छगु सर्वेक्षण क्यङ्गुदु ये समिक एक्सन अन्तर्राष्ट्रिय नेपालमा पिथङ्गु अध्ययन प्रतिवेदन कथन जलवायु परिवर्तन या लिचो जलाशय गनावना सुङ्गु बर्खा के उइगु वाल जीवन लिचो लाका तगु केङ्गु ख प्रतिवेदन अध्ययन सीमा लागा कथङ गुगु जिल्ला निदो सोचौ चे न्याखा छे दुने झिन्हेस नेसोमा ल्यामत दथी थो सर्वेक्षण यागु ख नेपाल मेडिकल काउन्सिल सार्वजनिक याको चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्र लाइसेन्स परीक्षा या लिचौँ स्वदेशी मेडिकल कलेज या विद्यार्थी तेगु शैक्षिक गुणस्तर बान लागु केङ्गुदु चिकित्सक लाइसेन्स परीक्षा मुक पास जु पी प्रतिशत खुइ खुगु फुटी गुइङ्यागु दुसा स्वदेशी कलेज पास जुपी विद्यार्थी नेह खुगु फुटी नेह गुगु प्रतिशत पास जुगु केङ्गु ख काउन्सिल थोए जेठ बाह्र निसे पन्ध्र गते तक यहाँका वोगु खुइ गुकगु चिकित्सक लाइसेन्स जाँचे बोती कापी नि निस खुइसोमा विद्यार्थी मध्ये झिङ्यास झिङ्यामा विद्यार्थी पि पास जुगु ख ज्या अलपत्र राखगु कञ्चनपुरिया झिङ्यागु सडक आयोजना या ठेक्का त्वा धगुदु पूर्वाधार विकास कार्यालय निर्माण व्यवसाय हो पूर्वाधार विकास कार्यालय दति जुगु सम्झौता कथन ठेक्का पोङके मफे धुङ्कानी म्या तसाना ज्यासी मदक गु धासे झिङ्यागो आयोजना ठेक्का त्वा धगु ख राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेला प्रति प्रकृतिमुखी जीवनशैली छेला लकस भिङ्के गु ज्याखे जुइता स्वपु दुपी सकल दथि इनाप्याना दु इनाप्याना दिगुदु राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल हलि लकस दिवस जुन 5, 2026 भिन्तुना देशना देशे स्वच्छ ऊर्जा छेला बुला सीमा पिगु जलवायु हुपा नापा लोए फैगु क्षमता विकास या मागु प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण नापा चिसक सियागु वैगु पुस्ता नीति सुरक्षित हो वंशे चोङ्किएगु लकस देके फेमा धैगु फेमा धका भिन्तुना देशना दिगु ख राष्ट्रपति पौडेल वातावरण संरक्षण हरित विकास र जलवायु हुपा या प्रभाव मयागु ज्याया त सकल समुदाय व स्वपुतैपी निकाय तेगु सक्रिय बोतिया नीति दिवस अझ छपछति जुई फेमा धका मनन्तुना दिगु दुसा वातावरण दिवस लसता उपराष्ट्रपति रामसाय प्रसाद यादव वातावरण नीति हानिकारक तत्व या छेलाबुला दिगु से वातावरण मैत्री स्रोत साधन व प्रविधि या छेलाबुला बिता इनाफेना दिगु नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इपिजी या नेपाल पाखे संयोजक डाक्टर भैसबहादुर थापा इपिजी प्रतिवेदन तगु दराज या ताँचा परराष्ट्र मन्त्रालय या त ललहाना दिगुदु संयोजक थापा थगु स्वास्थ्य व दया हुनी थता थाकुगु धासे परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालिया दोति परराष्ट्र सचिव अमृत बहादुर राई या त मिगद राज या ताँचा ललहाना दिगु मन्त्रालय धागु ख छु संचार माध्यमे इपिजी प्रतिवेदन हे मन्त्रालय ल लागु थे याना हसना सार्वजनिक याना चोङ्गु खया त कया मन्त्रालय च्यु त पुङ्कु सेन्थो प्रतिवेदन तगु दराज या ताँचा जक्क ललहनागु थति कगुदु विश्व वातावरण दिवस 2026 थौं देन्यङ्क तिथि ज्यासो नापाहना सङ्गुदु समृद्ध भविष्य आधार जलवायु नापा प्रकृति मैत्री विकास मुनारा नापा वा न्याङ्क थो दिवस हने त सङ्गु ख दिवस लसता वातावरण विभाग यले विशेष ज्याजो गोसा गोया सङ्गुदु विश्व वातावरण दिवस या मुख्य ज्याजोले कृषि वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरी मु पहा सुइस बोती काइगु ज्याजो जुइत सङ्गु ख वातावरण विभाग तिथि सरकारी निकाय विकास साझेदार वातावरणविद व स्वपुतै पिन्स भोतिकाई गुण थागुदु नापी विभाग मेरो किता मोबाइल एप सार्वजनिक यागुदु भूमि व्यवस्था सहकारी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल या बोतीसँग मेघ सार्वजनिक यागु एप पाखे मनुतेस बु नापा सेवा छेसना स्वे फैगु क्या फैगु जुगु ख नापी विभाग या कथ ए पाखे नक्सा प्रिन्ट फिल्ड बुक प्लट रजिस्टर फिल्ड रेखाङ्कन नापा या थिथि ज्यात अनलाइन पाखे आवेदन दर्ता पाखे प्रणालीसँग ओटिपी लला फैगु वा सेवाग्राही मोबाइल नम्बर व ओटिपी छेला थकुहे आवेदन बी फैगु व नियमित कथन स्वयं फैगु व्यवस्था यागु ख अथिया ई सेवा खल्ती व कनेक्ट आइपी थे जागु राजस्व फुले फैगु सुविधा न एप खे दुथ्या क गुण उगु विभाग धागु खसा मेरो किता सेवा मोबाइल एप नापा वेब संस्करण न लल हागु विभागीय धापु दुत हो लसत्या मन्त्री रावल न डिजिटल सुशासन यता सेला केता थुज्याको प्रविधि मैत्री सेवा यता अचत व्याका यङ्का चुनेगु फलसा नापा पङ्का दिगुदु लजगाय नितिम विदेश छुएको नामे नि गुगु लाख निदो ठगी यागु दोपसा प्रहरी नेमासित जना सार्वजनिक यागुदु बेरोजगार ल्यासे ल्यामपिन्ता लोबे जुइगु तलब्या लोबे लाका लजगाय नितिम फ्रान्स जर्जिया माल्टा नापा देश छुएको तोहो चिना ता यी तक्क मखुकु खलाना विदेश मचोसी स्वपुत्वा थगु धासे पीडितेसँग उजुरी बिधुङकानी प्रहरी सिन्धुपाल्चोक्या साङ्गा चोक गढी गाउँपालिका दुईया नि खुद दुमा निमा तामाङ व महतरी बर्दीवास नगरपालिका छाया नि पेद दुमा विवेक सहायता जोनागु ये उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय प्रवक्ता नापा प्रहरी उपरीक्षक शरद कुमार थापा छेत्री जानकारी ब्यादी गुख आदेश पिनेबुख युक्रेनिया राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्की रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन याता लुआफु नङ्केगु नीति तपेङ्क वार्ता या प्रस्ताव याना दिगुदु पुटिन याता कघासे सार्वजनिक पहुँचो या दिमा जेलेन्स्की युक्रेन व रुस जति तपेङ्क खला बला जग शान्ति पलिस्त जुगु धया दिगु ख तर पुटिन थ्याजागु युद्ध विराम या प्रस्ताव अस्वीकार याना दि धुङ्क गु ख अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प दास्ता जेलेन्स्की पुटिन जति तपेङ्क सल जुसा बनलाई गुलिस बिया दिगुदु रुसी राष्ट्रपति कार्यालय पौ कागु पुष्टि यासे पुटिन या तथो विशेषण जानकारी याक गुख पौसन जेलेन्स्की युद्ध नहङ्केगु नीति थ व पुटिन दति तपाईँको खाला बला जुई मागु दासे स्विजरल्यान्ड र टर्की थिए जागु देशे वार्ता या फैगु प्रस्ताव तया दिगुदु थोए दति सेन्ट पिटर्सबर्ग के गोसागोको आर्थिक मञ्च या छोले नोआसे पुटिन युक्रेन नापा सम्झौता नीति थ तयार जुयागु धया दिगुदु थोए विशेष तर थुकिया विशेष निगु पक्ष सम्झौता हो छु समझदारी या मागु वेक्या धापु नापान्दु अमेरिकी कङ्ग्रेस या क्वेचोङ्गु सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प या त इरान अझ सैन्य कारवाही न्योज्या कुसा डिकिएको प्रस्ताव पारित आगुदु प्रस्ताव या पक्ष निसौ गुई न्यामा व विपक्ष निसौ च्यामा सियागु मत लागु कङ्ग्रेसमा स्वीकृति मध्येका न्याकगु इरान लुआपु विशेष आलोचक देशन कुन नापाङ खिङ्गु ख आ मौसम या जानकारी थौ लुम्बिनी कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेश नापा देया हिमालय पहाडी लागाया मो थासे मधेस प्रदेश नापा कोशी बागमती गण्डकी प्रदेश या तराई लागाया छगुनिगु थासे वा वैगु सम्भावना कुबिगुदु मधेस लुम्बिनी प्रदेश या तराई लागाया मो थासे निने तक क्वागु फे वैगु नापा कोशी बागमती गण्डकी सुदूरपश्चिम प्रदेश या तराई लागाया छुन थासे क्वाइगु सम्भावना कुबिगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग या थापुदु वङ्गु निपे घौस ये सोनिक या क्वाज निगुगु फुटी च्यागु डिग्री सेल्सियस तथि लुइकगु खसा थौनिने ये सोनिक या क्वाज निगुगु निसे सुई छगु डिग्री सेल्सियस तथि चोनिगु दुकुमादु थौ सुते ये सोनिक लेङ्याता इजु या निगु मिनेटे लुइकगु सूर्य शनि लन्हेता इजु या पेङ्गु मिनेटे बी रेडियो नेपाल नेपाल भाषा या समाचार पुवन चिताइले नेपाली भाषा या समाचार नेनादिस शुभ
1: नागरिक लगानी कोषको नागरिक पेन्सन योजनामा सहभागी भई भविष्य सुरक्षित बनाओ यस योजनामा न्यूनतम मासिक 500 रुपियाँ जम्मा गरेर सहभागी हुन सकिन्छ
2: नागरिक लगानी कोष

मायालुलाई भेटे म के भन्छु होला, मायालुलाई भेटे म के भन्छु होला, मायालुलाई भेटे म के भन्छु होला, के भन्न सक्छु।

लासो फ्याफुल्ला तिनी मजुश्री सम्मत 1862 तालु ड्वाफ्रे लाला छेपा ङिचुई विक्रम सम्मत 2083 साल जेठ लाला ङिचुई सँगै सुङ्रे शुक्रबार चु रेडियो नेपाल हिन्ना तामाङ साङ्गुरी राङ डेनबुला ङा सूर्य मोक्तान ङाछला ग्रेन ठिम्पोन छेन्पो थेन लोन्सेङजाङला ङाछला चोहो खिलराज रेग्मिसे युल्ठिम संशोधन लामा युल्ठिमला मर्म थेन प्रस्तावना द ङाछला राङमान फान्सी शासकीय स्थायित्व थेन सन्तुलन द विशेष ध्यान पेनबारी सुझाव काइब्लोन बालेन्द्र शाहला ग्रेठिम सल्लाहकार असीम शाहला चोहबाङरी शोभा युल्ठिम संशोधन बहस पत्र शोभा गेदल थेन रूपतासे लिङ्मु लाबा दुईरी ङाछाला ग्रेन्ठिम्पोन छेन्पो रेग्मिसे कार्यकारी हुल्चोहो थेन काइब्लोनला ठिम खाप्पा त तेनमा बिबा ताम्री काठुइला सिटीमा दुईरी हतारी निर्णय आलाबारी सुझाव दोन्सिबान लामन स्थायित्व माइबाला ताम्री ह्याङला हिल्दा अर्को निरङ्कुशता अथवा सर्वसत्तावाद हुन हाङबारी खाम्बा खतरा माङबासे सचेतताबारी मैजनला शिवमला गेदल्ला चोहो असीम शाह चाहिँ ङाछाला ग्रेन ठिम्पो छेन्पो थेन ब्रोन्सेङजाङला चोहो रेग्मिला महत्त्वपूर्ण

जाप गर्दै त गेदल से सुबान बाबा बहसपत्र रेथान्सला मला बेसे सुङ्क्षेप मला सानम व्यवस्था सहकारी सङ्घीय मामिला थिएन सामान्य प्रशासन ब्लोनखाङ से सम्पर्क रि आरेबा निजामती कर्मचारी दा खाब सोम्रे डाङ्ग्री हाजिरी ता भने मोहिजेल्लाबान सोम्रे डाङ्ग्री हाजिर आतासम कारवाही प्रक्रिया तिसेल मला बेसे चेतावनी पिन बमला ब्लोनखाङ से तिनी गोर्खे कागुर छिसी अध्ययन विधा थिएन असाधारण विधा सम्बन्धीला अभिलेख राष्ट्रिय किताबखाना निजामती रि अपडेट आरेबा कर्मचारी दा सोम्रे डाङ्ग्री अनिवार्य रङला अपडेट लाबारी मोहिजेल्ला बमला नेपाल सरकार ब्लोनखाङ आयोग लोनखाङ थिएन मियो स्थललाई गेदिन्दा राङ्ला निकायका देख्याम लोलोलो दुई अध्ययन विधा अथवा असाधारण विधा स्वीकृत लाभा कर्मचारीलाई विवरण विधा थुम्सी जिन्साइनोन कर्मचारी हाजिर ताबा अथवा राष्ट्रिय किताबखाना निजामती गोसी देनबा ताम भएबारी थिएन सोम्रे नाङ्ग्री अभिलेख अपडेट लाबारी मोहिजेन लाभा हिन्ना मोख्युल वातावरण दिन्छन् 2026 तिनी मोख्युल दिन लोलोलो गेखोर सेङ्सी दाङबान मला समृद्ध भविष्यलाई आधार जलवायु थिएन प्रकृति मैत्री विकास बेबतामदा किन्सी साता गिक दोना चुपाल छे वातावरण दिन्छन् दाङसेला थापा मला दिन्छेला अवसरी तिनी सेङमा गेखोरी लेङमा थान्सेवान सानाम रिथेन पर्यावरण ब्लोन गीता चौधरी से जलवायु पोल लामन ग्रेन ग्रेन चुनौतीका देला घुङ्रिनन् नोर समृद्धि थिएन वातावरण द सोनालाबा घे छ्याम छ्याम नुन सेङमा रेखामतोला विषय संक्षेप मला मोख्युल वातावरण दिन्छन् 2026 केखो रिलेङ थान्सिवान ब्लोन चौधरी से समृद्ध भविष्यलाई आधार जलवायु थिएन प्रकृति मैत्री विकास विवाद तामसे नेपाललाई दिगो विकासलाई बारे ज्याबा ज्ञाम हुन्छ मलाई विषय सुङ्क्षेप हिन्ना ब्लोन चौधरी से सरकार से जलवायु पोद च्याङ्नला बारी थिएन जलवायु अनुकूलनदा राष्ट्रिय विकास योजनाला लोलन अङ्गल रूपरी गेला बारी बाङ्ला पनि मलाई विषय सुङ्क्षेपन पिङ नोर्थुम्दा विकासला ठिम्दा सोसी व्यवहारिक कार्यान्वयनला बारी बाङ्ला पनि मलाई विषय सुङ्क्षेप मला दिन्छेनला अवसरी हिल्चोहो रामचन्द्र पौडेल से प्रकृति थिएन मिलुदा तेन्सी वातावरण द ज्याबसो बारी खाम्बा थिएन सोनाला बारी खाम्बा थिएन सम्बन्धित गेला बारी बेनादन मोहिजेनला शुभ मला चरानुलासी रो हिल्चोहो रामसहाय प्रसाद यादव सेनुन वातावरण द नोङलाबा सेला प्रयोग द कासी वातावरण मैत्री स्रोत साधन थिएन प्रविधिला उपयोगला बताम्दा बाङपिन बारी खाम्दा विषय सुङ्क्षेप मला हिल्चोहो रामचन्द्र पौडेल से ह्याङला ग्योई सेमलेङ थिएन रिमठिम ह्याङला मौलिक पहिचान थिएन गौरव गोर्गिनुन हिन्न विषय सुङ्क्षेप मला ग्रेन्ड वाइखा ब्रिखेन सिद्धिचरण श्रेष्ठलाई गार्जगिक से चुइसे गाँचा केवा दिन्छेनलाई अवसरी सेङमा घेखुरी लेङमा थान्सिवान हिल्चोहो पौडेल से सेमलेङ से मिला भावना द पाङबा चक्केना ताना समाज द छोड्न लबा थिएन संवेदनशील सोबारी खाम्बा महत्त्वपूर्ण माध्यम हिन्न विषय सुङ्क्षेप मला चुराङ्नु लसै रो हिल्चोहो रामसहाय प्रसाद यादव से आयुर्वेद योग थिएन ध्यान रङमा पुराण मानलाबा ठिम्दा आधुनिक लुई ठिम्से युल्बा दा सस्तो सजिलो थिएन ग्रेङमा दुई दोना लुई द ज्याबा सोबारी खाम्बा मुला विषय सुङ्क्षेप मुला आयुर्वेद योग थिएन ध्यान से लुई द ज्याबा सोबारी खाम्बा मुला विवा ताम्दा किन्से सेङबा मोक्युल फाल्डी लेङमा थान्सिबान रो हिल्चोहो यादव से योग से मिलुई द ताबा बेरन खाल्ला ह्याम्दा मानला बारी थिएन ध्यान से मानसिक शान्ति दुङ्गाला व्यवस्थापन थिएन सामाजिक सद्भाव कायम थान्बारी खाम्से टिप मुला विषय राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र से सरकारी गेदिम गदेरी छड्के अनुगमन लासिटेप मुला केन्द्र से रेदाङ से गोर्चुई गेदिम गदेरी छड्के अनुगमन लाबन मुला विषय केन्द्रला सूचना अधिकारी सरिता खतिवडा से सुङ्बा हिन्ना सूचना अधिकारी खतिवडा से गोर्गा समूह शोषी तोक लाबा दुईरी हाजिरी लाबा आलाबा गोइलो क्वानमा थिएन आकनमा फाइल ट्राफिङ लाबा रङमा ताम्री अनुगमन लासिटेप मुला विषय सुङ्बा बोला नेपाल साउनला चुर्से केन्द्र से तोङ्गिक गार्जगिक से गोर्सोम्ची गेदिमरी अनुगमन लासे जिन बमला थेनिगदरी तोङडु ग्यार्जाङी से मेन्दोचुई कर्मचारी गदे से गेदिम से तोकलाबा दुई आतेनमा थेन तोङगिक ग्यार्जगिक से मेन्दो ढुची नि कर्मचारी से गोइलो आकोनबा स्याप्पा मुला बिसे केन्द्रला सूचना अधिकारी खतिवडा से सुङबा हिन्ना रोङसाब्लोन शिशिर खनाल भारतला रोङसाब्लोन डाक्टर एस जयशङ्कर लङ्गै साङ्री तिनी नयाँ दिल्ली दोषी बमला नयाँ दिल्ली धोबा ब्लोन खनाल चाहिँ भारतीय रोङसाब्लोन डाक्टर जयशङ्कर थिएन औपचारिक काठुई लसलता बमला रोङसाब्लोन खाङलाई अनुसार गोर्गी हिलपक्षीय छोङ लगानी सम्पर्क सञ्जाल ऊर्जा थिएन स्यान लामन चासोला ताम्री काठुई लसलता बमला रोङसाब्लोनलाई चुकुर चाहिँ नेपाल थिएन भारतला ब्रेलबदा अझ कोङमा सोबारी रोतासेलमला बेसी नन पाङ बमला रोङसाब्लोन खनाल चुनु जेठलालाई घिची से ब्लिकुनु एक खबा गेखोर मुला विषय रोङसाब्लोन खाङसे पाङ बमला
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल चाहिँ राजस्व आफाना बाबरी खम्बा विमान लोलोलोलो ग्लाग्याम चुङमा ग्यार्जङ निश्चय गोरु निश्चय कु विद्युतीय सवारी साधनलाई छानबिन लबारे सरकार से गोर्खेको समिति सोभमला काइब्लोन थेन ब्लोन सेङजाङलाई गेदिम्से पिन्बा विशेष निर्देशन रि नोरब्लोनखाङ भन्सार विभाग नेपाल प्रहरी थेन सशस्त्र प्रहरी बल मुल्मी गदिमुबा छानबिन समिति सोभ हिन्ना काइब्लोन बालेन्द्र सहला प्रेस थेन अनुसन्धान खेतपो दिपा दहालला अनुसार सरकार सुशासन बाबरी थिएन राजस्व दल हेनलाबारी सचेत मुबासे समिति सोसी गेलाबारी ती बहिन्ना समिति से सवारी साधन चुङमा ग्लारिन दोषी छानबिन लबारी ती सिजिनमा बोला बेसिनुन सुङमा मोला निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन आयोग नेपाललाई गे तेनबा ग्रेन निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी से जेन्जी विद्रोहली चला लाडु नाङ्ग्री प्रतिनिधि सभालाई निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपले सेङबारी खाम्ब विवाह जाजा तमाइन विषय संक्षेप मला निवा फागुनलाई इचिसे गिक्कुन सेङ्बा निर्वाचनलाई कोइताम लाबारी सेङ्बा गे खोरी लेङमा थान्सिवान गे तेनबा ग्रेन पो भण्डारी से निर्वाचनलाई दुई तोक्लासे जिम्मा लिछ निर्वाचन सेङबारी खाम्लुम विवाह तामथेन लामन खाल्ला चुनौतीका देला गुङ्ग्री नेपाल सरकार आयोग ग्लेठिन दल सरोकार थान्बा पक्ष थिएन युलबाला गुङ्ग्री निर्वाचन सेङमारी खाम्ब हिन्ना विषय सुङ्क्षेप हिन्ना गेतेनमा ग्रेन आयुक्त भण्डारी चाहिँ आन्दोलन से नुङ्नलाबा अनुशासन दा कायम थान्बारी निर्वाचन बिमा स्यान विकल्प आरे बसे लामन चुनौती गदेला गुङ्ग्री नुन निर्वाचन सेङमारी खाम्मा राङ्दा लामन ताङमा खाब मुला बिसिनन् सुङ्क्षेप मुला ओसम सम्पत्ति छानबिन आयोग से तोकलाबा बिनान दानपोथिन मिसे चुनुन जेठला नाङ्ग्री राङराङला सम्पत्ति विवरण पिनबारी मोइजेन लाभ मुला सार्वजनिक दाण्डे मुबा दानग्याम रिटायर तासी जिम्मा थिएन थोन्सी जिम्मा मिसे राङराङ सेन हुलाक अथवा आयोगलाई इमेल घ्याम विवरण थिएन उजुरी पिनबारी खाम्सेल मुला बिसे आयोग से पाङ बहिन्ना आयोग से 2048 साल एनसे 2083 साल दोनामा खाजी बनुन सार्वजनिक दाण्डे टिसी गेलाबा मिसे दानला दुरुपयोग लासी अस्वाभाविक टाङ्गा शोभा माग्छम् उजुरी लासी पिनबारी थिएन छानबिन प्रक्रिया दर ओलासी पिनबारी बेनादन मोइजेन लाबमुला दान्दे रङसिङ एन छुपेगेन मोबा तामाङ साङ्गुर तिनी त तामाङ साङ्गुर जिन्जी रेडियो नेपाल ज्ञानमा लसेको लसो फ्याफुल्ला

यी सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दिवास्थिक विजय झासा सुनल जा मैथिली भाषा में समाचार। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हमर भाषा साहित्य आ संस्कृति हमर मौलिक पहचान आ गौरव भेल बतौलनि छ। आ युवा कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ के 115वां जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के संबोधन करैत ओ साहित्य सृजना केवल भावना के अभिव्यक्ति मात्र नहीं भ समाज के चेतनशील जागरूक आ संवेदनशील बनेबाक महत्वपूर्ण माध्यम भेल बतौलनि छ। राष्ट्रपति पौडेल नेपाली भाषा साहित्य जनचेतना आ राष्ट्रीय भावना के विकास में युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ पहुँचौने योगदान के स्मरण करैत कहलनि आजुक नया पुस्ता युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ के केवल इतिहास के एक कवि के रूप में मात्र नहीं भ चेतना साहस सृजनशीलता राष्ट्रप्रेम आ मानवीय मूल्य के प्रेरणा स्रोत के रूप में बुझब आवश्यक है। राष्ट्रपति पौडेल जन्मभूमि प्रति के अथाह प्रेम राष्ट्रप्रति के आस्था नेपाली जनजीवन प्रति के संवेदनशीलता प्रचुर मात्रा में भेटवला युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ के कविता मध्य हुनक रचना मेरो प्यारो ओखल ढुंगा जन्मभूमि प्रति के आगाध प्रेम के नेपाली साहित्य में अविस्मरणीय रूप में स्थापित कने बतौलिन। कार्यक्रम में डाक्टर दुबसु छेत्री आ डाक्टर गार्गी शर्मा के युग कवि सिद्धिचरण पुरस्कार से पुरस्कृत कैल गेल छल। उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव वातावरण के लिए हानिकारक तत्व के उपयोग के रोकत वातावरण मैत्री स्रोत साधन आ प्रविधि के उपयोग में जोर दल जवाक चाही आवश्यक

पर जोर देलनि। वृक्षारोपण, वन विस्तार, हरित गृह, गैस नियन्त्रण, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग आ वातावरण मैत्री जीवनशैली अपनाएब हमरा अहाँके सजिया दायित्व भेल। हुनकर कहब छलनि, दिवस जल जमीन आ जंगल बचेबाक हमरा अहाँके सजिया संकल्प के मजबूत बनेबाक उपराष्ट्रपति यादव विश्वास लेलनि। सन 1973 सँ संयुक्त राष्ट्र संघ वातावरण कार्यक्रम के नेतृत्व में मनबैत आयल ई दिवस वातावरण संरक्षण के लेल विश्व के सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय अभियान अछि। भूमि पुनर्स्थापना, मरुभूमिकरण रोकथाम तथा रौदी के प्रतिरोध में ध्यान केन्द्रित करैत नेपाल सहित विश्वभरि विविध कार्यक्रम के आयोजना कऽ ई दिवस मनाओल जाइत अछि। उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव आयुर्वेद, योग आ ध्यान जेहन परंपरागत एवं प्राचीन उपचार पद्धति के आधुनिक स्वास्थ्य प्रणाली संग जोड़ कर सुलभ, सहज आ दीर्घकालीन स्वास्थ्य लाभ हासिल कायल जा सकते अछि बतौलनि अछि। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसर में ब्रह्मभूमि हेल्थ रिसर्च सेंटर द्वारा आयोजित आयुर्वेद, योग तथा ध्यान मार्फत स्वास्थ्य शीर्षक के अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के समुद्घाटन करे तो योग मार्फत जीवन शैली जन्य रोग रोकथाम आ ध्यान सँ मानसिक शांति, तनाव व्यवस्थापन तथा सामाजिक सद्भाव प्रवर्धन में सहयोग पहुँचत से विश्वास व्यक्त कयलनि। उपराष्ट्रपति आयुर्वेद स्थानीय जड़ी बूटी तथा परंपरागत ज्ञान में आधारित उपचार पद्धति भेल चर्चकृत रोग के पहचान, रोकथाम तथा निदानात्मक उपचार सेवा में अय के योगदान महत्वपूर्ण रहल बतौलनि। विश्वव्यापी महामारी, मानसिक तनाव, जीवन शैली जन्य रोग तथा जलवायु परिवर्तन जेहन चुनौती के सामना करब बहुपक्षीय सहकार्य अपरिहार्य रहल चर्च करैत उपराष्ट्रपति परंपरागत उपचार पद्धति आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान बीच के सहकार्य के प्रोत्साहन करबाक आवश्यकता रहल बतौलनि। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री कृष्ण प्रसाद यादव सब संग सहकार्य क विपद प्रतिरोधी समाज निर्माण करबाक लेल प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलनि अछि। आइ सरलाही के बागमती नगरपालिका वार्ड नंबर 11 करमैया स्थित बागमती नदी किनार में आयोजित अभ्यास हाथे मालो कार्यक्रम के संबोधन करैत ओ सहकार्य समन्वय मार्फत विपद प्रतिरोधी समाज निर्माण करबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। प्रदेश सरकार विपद व्यवस्थापन आ उद्धार कार्य में संलग्न रहि क सब सुरक्षा निकाय सहकार्य करैत विपत्ति प्रतिरोधी समाज निर्माण करबाक लेल तैयार रहल मुख्यमंत्री यादव के कहब छलनि। ओ मधेश बीतल समय भोगने प्राकृतिक विपत्ति आयसा जनधन में पहुंचल क्षति के विश्लेषण कर आवय वाला कार्य योजना तैयार करबाक दावी कयलनि। मुख्यमंत्री यादव नेपाली सेना बीतल समय आम नागरिक के जनधन के क्षति न्यूनीकरण में निर्वाह कयने भूमिका प्रशंसनीय रहल बतौलनि। कार्यक्रम में प्रदेश के गृह संचार तथा कानून मंत्री फकीरा महतो नागरिक के जनधन के सुरक्षा के लेल सरकार के सेहो चौचंक भ कर रहबाक चाही बतौलनि। ओ एहन कार्य के व्यापक बनाबा सकला पर सुरक्षा निकाय में दक्षता वृद्धि करबाक आ प्राकृतिक विपत्ति के क्रम में अय के सदुपयोग कर जनधन के रक्षा कायल जा सकते अछि बतौलनि। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार के अर्थमंत्री युवराज भट्टराय, ईश्वरपुर नगर पालिका प्रमुख मनोज कुमार आचार्य, मध्य प्रदेश भरी विभिन्न गण के सेना प्रमुख सबके उपस्थिति रहल छल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कृष्ण प्रसाद यादव जनकपुर धाम के प्रदेश के मात्र निर्भर देश के प्रमुख धार्मिक गंतव्य के रूप में विकास करबाक लेल प्रयास भ रहल बतौलनि अछि। मुख्यमंत्री यादव चार तारे होटल पौआ तथा स्वा होटल द्वारा आय सँ शुरू कयल गेल वृहत खाना प्रदर्शनी 2083 के जनकपुर धाम में उद्घाटन करैत बात बतौलनि अछि। ओ भारत के उत्तर प्रदेश में रहल राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम के दर्शन करबाक लेल वार्षिक रूप में आवय वाला 50 करोड़ पर्यटक मध्य 5% पर्यटक जानकी जन्मभूमि में आयला पर मात्र क्षेत्र के पर्यटन विकास के कायापलट हाथ बतौलनि। मुख्यमंत्री यादव बुध एयर शीघ्र जनकपुर धाम अयोध्या, अयोध्या सर जनकपुर धाम सीधा हवाई सेवा उड्डान के विषय में तैयारी कने आ सेवा शुरू भेलाक बाद जनकपुर धाम में आवय वाला गुणस्तरीय भारतीय पर्यटक के संख्या में वृद्धि हेबाक बतौलनि। मध्य प्रदेश के शिक्षा तथा संस्कृति मंत्री मनोज कुमार सिंह जनकपुर धाम में शुरू भेल चार तारे होटल पौआ एहि क्षेत्र के पर्यटन प्रवर्धन में मदद पहुँचत से विश्वास व्यक्त करैत होटल पौआ मिथिला कला संस्कृति संस्कार तथा परिकार के प्रवर्धन में ध्यान देबाक चाही से सुझाव देलनि। विश्व वातावरण दिवस जनकपुर धाम में विभिन्न कार्यक्रम के आयोजना कय मनाल गेल अछि। समृद्ध भविष्य के आधार जलवायु एवं प्रविधि मैत्री विकास मूल नारा के संग विभिन्न कार्यक्रम सबके आयोजना कय धनसा में ई मनाल गेल अछि। एहि अवसर पर मध्य प्रदेश के वन तथा वातावरण मंत्रालय डिवीजन वन कार्यालय के संयुक्त आयोजना में जनकपुर धाम के वार्ड नंबर 23 में बिन्ही में अंतर्गत रहल प्रस्तावित रामायण सर्किट के राम जानकी मार्ग में विभिन्न जाति के गाछ सब रोपि कर
मनायल गेल अछि। प्रस्तावित राम जानकी मार्ग सौन्दर्यीकरण आ पर्यावरणीय हरित मार्ग के रूप में विकास करबाक उद्देश्य

संग बनौली मोड़ से लक दुधमती नदी पुल धर डिवाइडर में विभिन्न जात के गाछ सब रोपल गेल वातावरण संरक्षण अभियानी सुरेश शर्मा के जानकारी दिलन। कार्यक्रम में वन तथा वातावरण मंत्री शंकर चौधरी भावी संतति के जीवन रक्षा करबाक लेल तथा वातावरण से पड़ रहल प्राकृतिक विनाश रोकबाक लेल हरेक के वृक्षारोपण करब जरूरी रहल बतौलन। कार्यक्रम में मंत्रालय के सचिव जीवनाथ पौड़ेल, डिवीजन वन कार्यालय के प्रमुख वन अधिकृत विनोद सिंह, वडा अध्यक्ष राघवेंद्र साह, जनकपुर धाम वन प्राविधिक समाज के अध्यक्ष सुदीप मंडल, महासचिव सुरेश शर्मा सहित के अभियानी आ बिन्ही मावी के विद्यार्थी सब सहभागी छल। संपत्ति छानबीन आयोग तोकने सब पदाधिकारी तथा व्यक्ति या जेठ मसान भीतर अपन अपन संपत्ति के विवरण बुझा लेत से विश्वास व्यक्त कलक। सार्वजनिक पद में रहल, पद से सेवानिवृत्त भेल आ हटि चुकल व्यक्ति स्वयं अपन प्रतिनिधि वा हुलाक वा आयोग के ईमेल मार्फत विवरण तथा उजूरी बुझाव के व्यवस्था कैल गेल। आयोग 2048 से लक 2083 साल धर के कोनो समय अवधि में सार्वजनिक पद धारण केने व्यक्ति पदीय दुरुपयोग का अस्वाभाविक कमाई केने देखल गेल उजूरी का छानबीन प्रक्रिया में सहयोग करबाक संबंध में अनुरोध कलक। आयोग देश में प्रजातंत्र पुनः स्थापना भेल लगभग 35 वर्ष के अवधि के 2062-63 के 2082-83 के 2048-49 से 2062-63 साल धर दू चरण में विभाजन का फाइल तथा उजूरी छानबीन करबाक स्पष्ट कलक। वर्तमान सरकार 2048 साल पश्चात सार्वजनिक पद में रहल, पद से सेवानिवृत्त भेल वा हटि चुकल व्यक्ति के संपत्ति के छानबीन का प्रतिवेदन बुझेबाक कार्यदेश सहित गठन केने 5 सदस्यीय आयोग अखन संपत्ति विवरण आ उजूरी संकलन में व्यस्त रहल। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के महान देश कह के प्रशंसा करत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व के भारत के स्वतंत्र विदेश नीति के खुलकर समर्थन कलने छे। ओ संयुक्त राज्य अमेरिका रूस संघ के सहकारी के विषय में भारत ऊपर दबाव देवे वाला प्रयास के कटाक्ष करत एहन कदम सब अंतर्राष्ट्रीय तथा द्विपक्षीय संबंध के लिए हानिकारक हेबाक चेतावनी दिलने। सेंट पीटर्सबर्ग इकोनॉमिक फोरम में संचार माध्यम के संबोधन करत राष्ट्रपति पुतिन भारत अपन राष्ट्रीय हित के हिसाबे सब देश संग संबंध विस्तार कर रहल में रूस संतुष्ट रहल बतौलन। वो भारत के महान देश कहत एक कूटनीतिक स्वतंत्रता के स्वाभाविक प्रक्रिया भेल टिप्पणी कलन। अमेरिका रूस संघ के सहकार्य के कारण भारत ऊपर दबाव सृजना करबाक प्रयास कर रहल आरोप लगबित पुतिन एहन दबाव अस्वीकार्य रहल टिप्पणी कलन। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दीवास से सुन रहा मैथिली भाषा में समाचार पूरा भेल।

ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामी झा ने भारत की 5 दिवसीय यात्रा पूरी कर लौटे स्वदेश। परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल भारत दौरे पर पहुंचे नई दिल्ली। अवकाश समाप्त होने के बाद भी संपर्क विहीन कर्मचारियों को 3 दिन के भीतर हाजिर होने का सामान्य प्रशासन मंत्रालय का आह्वान, अन्यथा कार्रवाई की चेतावनी। और भारतीय राज्य मणिपुर के कांगपोकपी जिले में हिंसा की एक घटना में 3 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामी झा ने 5 दिवसीय भारत यात्रा पूरी कर आज स्वदेश लौट आए हैं। स्वदेश लौटने के बाद त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल पर आयोजित पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के निमंत्रण पर हुई यात्रा के दौरान हुई वार्ताएं पारदर्शी और स्पष्ट रहीं। उन्होंने कहा कि संपर्क सुविधा से लेकर धार्मिक पर्यटन तक नेपाल की प्राथमिकताओं और द्विपक्षीय संबंधों से अपेक्षित लाभों पर स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत की गई। सभापति लामी झा ने सीमा संबंधी समस्याओं का समाधान कूटनीतिक माध्यम से करने की बात कही और कूटनीति के विषय को जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ समझने का आग्रह किया। परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल भारत के विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के मैत्रीपूर्ण निमंत्रण पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत में नेपाल के कार्यवाहक राजदूत डॉ सुरेंद्र थापा और भारत के विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मुनु महावर ने उनका स्वागत किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यात्रा के दौरान मंत्री खनाल अपने भारतीय समकक्ष डॉ जयशंकर के साथ औपचारिक वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय व्यापार, निवेश, संपर्क सुविधा, ऊर्जा तथा जनस्तरीय संबंधों पर चर्चा होगी। मंत्री खनाल 24 जेठ को काठमांडू लौटेंगे। भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय ने संपर्क विहीन कर्मचारियों को अगले 3 दिन के भीतर कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने सूचना जारी कर अध्ययन अवकाश और असाधारण अवकाश से संबंधित अभिलेख, राष्ट्रीय किताबखाना निजामती में अद्यावधिक न करने वाले कर्मचारियों को 3 दिन के भीतर रिकॉर्ड अपडेट करने को कहा है। साथ ही विभिन्न सरकारी निकायों को भी कर्मचारियों के अवकाश और उपस्थिति संबंधी विवरण सत्यापित कर अभिलेख अद्यावधिक करने का अनुरोध किया गया है। सरकार ने बंदरों और अन्य वन्य जीवों से कृषि फसलों को हो रहे नुकसान को कम करने के उपाय खोजने के लिए आम जनता और विशेषज्ञों से सुझाव मांगे हैं। कृषि वन तथा वातावरण मंत्रालय के तहत गठित मानव वन्य जीव द्वंद प्रबंधन तकनीकी कार्यदल ने 15 दिनों के भीतर राय और सुझाव उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। कार्यदल का कहना है कि किसानों, स्थानीय निकायों और विशेषज्ञों के अनुभव के आधार पर व्यावहारिक तथा प्रभावी समाधान तैयार किए जाएंगे। इसके लिए नीति सुधार, राहत, क्षतिपूर्ति और वन्य जीव प्रबंधन से जुड़े सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक व्यक्ति मंत्रालय की वेबसाइट, ईमेल या QR कोड के माध्यम से अपने सुझाव भेज सकते हैं। कृषि वन तथा वातावरण मंत्री गीता चौधरी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच आर्थिक समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण को साथ साथ आगे बढ़ाना जरूरी है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि नेपाल में जलवायु परिवर्तन का असर हिमालय से तराई तक दिखाई देने लगा है। उन्होंने बताया कि सरकार हरित अर्थव्यवस्था, वन संरक्षण, कृषि, ऊर्जा और जैव विविधता आधारित विकास को प्राथमिकता दे रही है। मंत्री चौधरी ने कहा कि सामुदायिक वन प्रबंधन और जड़ी बूटी आधारित उद्योगों के विकास से संरक्षण के साथ आर्थिक समृद्धि भी हासिल की जा सकती है। उन्होंने वायु प्रदूषण नियंत्रण को भी महत्वपूर्ण बताते हुए वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली को और सुदृढ़ बनाने की जानकारी दी। उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव ने कहा है कि आयुर्वेद, योग और ध्यान जैसी पारंपरिक उपचार पद्धतियों को आधुनिक स्वास्थ्य प्रणाली से जोड़कर लोगों को सुलभ और दीर्घकालिक स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया जा सकता है। कीर्तिपुर में आयोजित

0: नेपाल टेलिकॉम राष्ट्रको संचार।
1: अब बाकी समाचार। सूचना तथा संचार मंत्री डॉक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा ने कहा है कि सरकार डिजिटल रूपांतरण, साइबर सुरक्षा, मीडिया सुधार और संस्थागत क्षमता विकास के क्षेत्रों में विभिन्न संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज मंत्रालय में संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में डिजिटल शासन, सेवा वितरण में सुधार, साइबर अपराध नियंत्रण, पत्रकार सुरक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग जैसे विषयों पर चर्चा हुई। नेपाल के लिए संयुक्त राष्ट्र की आवासीय समन्वयक लीला पीटर्स याहिया ने साइबर अपराध नियंत्रण, पारदर्शी शासन और तकनीक के प्रभावी उपयोग पर जोर दिया। सूचना तथा संचार मंत्रालय ने सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल पीएसबी में कथित वित्तीय अनियमितता, प्रक्रियागत कमजोरी और वित्तीय अनुशासन उल्लंघन के आरोपों की जांच के लिए समिति गठित की है। इंजीनियर डॉक्टर आभाष मास्के के संयोजकत्व में गठित समिति में उमेश रूपा खेती, टीकाराम कार्की और नवीन कुमार मिश्र सदस्य हैं। मंत्रालय के अनुसार सैटेलाइट बैंडविड्थ सेवा चैनलों के विस्तार, एसडी से एचडी रूपांतरण और उपकरण खरीद से जुड़े निर्णयों पर उठे प्रश्नों का अध्ययन किया जाएगा। समिति को 21 दिनों के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का कार्यादेश दिया गया है। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री विराज भक्त श्रेष्ठ ने कहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन नेपाल के हरित भविष्य के निर्माण का महत्वपूर्ण अवसर और संसाधन है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जल विद्युत और अन्य नवीनीकरणीय ऊर्जा की प्रचुर संभावना के कारण नेपाल ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए अत्यंत उपयुक्त देश है। उन्होंने बताया कि सरकार ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2080 लागू कर चुकी है और व्यावसायिक उत्पादन के लिए पायलट परियोजनाओं हेतु बजट की व्यवस्था भी की गई है। मंत्री श्रेष्ठ ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता से संबंधित अलग कानून बनाने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। नेपाल में निवेश के लिए श्रीलंका के व्यवसायियों ने रुचि दिखाई है। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ और सिलोन चैंबर ऑफ कॉमर्स के बीच हुई बैठक में दोनों देशों के बीच निवेश प्रवर्धन के विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान श्रीलंकाई व्यवसायियों ने नेपाल में निवेश के लिए अपनी तत्परता व्यक्त की। महासंघ के वस्तुगत उपाध्यक्ष नरेश लाल श्रेष्ठ ने कहा कि नेपाल में 40,000 मेगावाट से अधिक जल विद्युत उत्पादन की संभावना है और इस क्षेत्र में निवेश के व्यापक अवसर मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि नेपाल सरकार ने जल विद्युत क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए अनुकूल नीतियां अपनाई हैं और इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता है। श्रेष्ठ ने कहा कि नेपाल में लगभग 2/3 बहुमत की सरकार है और वर्तमान सरकार विदेशी निवेश को आकर्षित करने और निवेशकों को आवश्यक सहजीकरण प्रदान करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल में जड़ी बूटी उद्योग के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। श्रीलंकाई उद्योगपतियों से इस क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने का आग्रह करते हुए उन्होंने बताया कि नेपाल वर्तमान में जड़ी बूटी उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल कम मूल्य पर निर्यात कर रहा है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारतीय राज्य मणिपुर के कांगपोकपी जिले में हिंसा की एक घटना में 3 लोगों की मौत हो गई है। कांगपोकपी थाने के प्रभारी मिन किपकेन के हवाले से बीबीसी ने बताया, यह हमला आज तड़के करीब 4 बजे किया गया। हथियारों से लैस संदिग्ध उग्रवादियों ने लोईबोल खुलेन गांव में अंधाधुंध गोलियां चलाईं, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। उन्होंने आगे कहा, हमलावरों ने कुछ घरों को भी आग लगा दी थी। फिलहाल पुलिस की टीम आसपास के इलाकों में हमलावरों की तलाश के अभियान चला रही है। पुलिस ने इस हमले में मारे गए लोगों की पहचान लिटखोंगम हाओकिप, उनकी पत्नी टिनमेरी हाओकिप और जांग मिनलाल हाओकिप के तौर पर की है। ये सभी लोईबोल खुलेन गांव के रहने वाले थे। इस बीच कुकी जो जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले शीर्ष संस्था कुकी इनपी मणिपुर ने इस हमले की निंदा करते हुए नगा चरमपंथी संगठन एनएससीएन

0: आईएम और उसके कथित प्रॉक्सी समूह जेडीयूएफके को जिम्मेदार ठहराया है। मणिपुर में बीते 3 साल से जारी जातीय तनाव और हिंसा के माहौल में इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। पहले यह हिंसा कुकी जनजाति और मैतेई समुदाय के बीच शुरू हुई और इस साल फरवरी से कुकी और मणिपुर में बसे नगा जनजाति के बीच नई हिंसा शुरू हो गई है। इस ताजा हिंसा को लेकर कुकी जनजाति के जितने भी नागरिक संगठनों ने बयान जारी किए हैं उसमें नगा चरमपंथी गुटों को जिम्मेदार ठहराया गया है। हालांकि अब तक नगा चरमपंथी समूहों की तरफ से घटना से संबंधित किसी भी आरोप का जवाब नहीं आया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामी झा ने भारत की 5 दिवसीय यात्रा पूरी कर लौटे स्वदेश। परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल भारत दौरे पर पहुंचे नई दिल्ली। अवकाश समाप्त होने के बाद भी संपर्क विहीन कर्मचारियों को 3 दिन के भीतर हाजिर होने का सामान्य प्रशासन मंत्रालय का आह्वान, अन्यथा कार्रवाई की चेतावनी। और भारतीय राज्य मणिपुर के कांगपोकपी जिले में हिंसा की एक घटना में 3 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।
1: सादा खाना 100 रुपियाँ, मटन खाना 200 रुपियाँ। ओए, मोबाइलको डाटा पनि हामीले चलाएको मेनु अनुसार महँगो र सस्तो पर्नु पर्ने होइन र?
2: हुन्छ नि मित्र, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, व्हाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू मात्रै चलाउने हो भने नेपाल टेलिकममा असाध्यै सस्तो मूल्यमा सोसियल मिडिया डाटा प्याक पाइन्छ। त्यही नै मजाले चलाउने
3: *1415# डायल गर्नुहोस्।
4: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।